विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: झारफुक परामर्श केन्द्र दोनखा।
1: थप जानकारी के लागि सम्पर्क नम्बर अध्यक्ष गुरु पुरूषोत्तम केसी 9864000044 कृष्ण थपलिया सचिव 9761808148।